0: Hello.
1: हेलो।
0: गुड इवनिंग। हम बचो
2: मेरे मेरे भाई को
1: हेलो
2: हेलो।
1: हेलो
2: यस
1: दादी बचो गुड इवनिंग
2: बचो मेरी यहां पर बोलिए
1: मैं बचो दादी उदीन बेबी आकर से फ्री
2: बचो फिर मैं आकर इसी मैं गाज़े फ्री इसलिए
1: वन ओके ओके दम बचो उन पर ये उपयोग टॉपिक नहीं सही
2: Bacho, my wife or pink phone and my bomb parama.
1: Prima. Yeah. Yeah, papa said ne yere afefru. Mm. And I dream say yem paya no eye mamene dia.
3: Yes.
1: Winya winyame ayaresa. Mm. Winyame enwusra. Mm. Se ebe